गीते गैवा मेरा नार्चना ये पद संकल्पनावान तिम्रान कीर्ति गेन होंदाई मां हितन ओब कैमति वेन नटाती के लम अमदन्ने हर ये टम ओबे कैमत्त हितन ओब टहल बालांट पुलवान अंतर जाले उससे ये गीते मिलाड़ मां हितुआ विशारद गुणदास खपुगे शोरीन गाना करपु गीत्यक एकतु करान नट वड़सत हानट